आन को दान न लागत नीको, आन को दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

गुरमुख जन्म सवार दरगे सच्ची दरगाह जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा बिन मलिया जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका सदे उठी जा गुरमुख सदे जान आवन कल्ले गुरमुख सदे जान

निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, हाय हाय, निर्धन को पल्ले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगिया वाले दे प्यार विच एक बारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघते हैं अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंध कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग अज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी

जे लोड़े सदा सुख भाई, साधु संगत गुरे बताई। निशानी की है, नकली भी बड़े हैं। निशानी की साधु की,

0: की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा है, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो,

तू अपना बिरद पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बांह फड़ ले जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती जिमें उना दी पैज रखी जिमें उना दी रखिया कीती जिमें उना दी

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा। अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इसदे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के, रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकलदियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे, बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखिए रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार आखिया सी, जाओ दलिदरी, सुदामा गरीब हो गया, दलिदरी हो गया, घरवाली दी कन्नी सरोत पई, एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया, ओ सानू भुले नहीं, आखिया की सबूत है, आखिया भुलदा उना नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाह। कहन लगी जे सानू ओ ना भुल दे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे, इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी। ता सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच, पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी, नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी, भाग उना दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है, उना दे पुन्ना नू भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है, ते जिसने गुरु नानक दे घर नू अपना घर जान के सेवा कीती, ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामा पईयां, मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैन नहीं, भगवान चट तैयार हो गए, मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा, क्योंकि बड़ा हित सी आपस विच, कठे खेडना, कठे पढ़ना, कठे खाना। जिसले दोनों जान लगे, माता दे मन विच विचार आया, मासूम बच्चे हन, जंगल नू जा रहे हन, शायद देर लग जाए, मत इना नू भुख लगे। लप छोलियां दी पुजे होए, सुदामे दी चोली विच पा के आखिया बच्चो जे भुख लगे ता खा लैण। सुदामे ने ओ छोले कुर्ती दी जेब विच पा ले, भगवान अगां जा चुके सन, सुदामा पिछों दी जा मिले। जिस वेले जंगल विच पहुंचे, लकड़ां कटियां चुक के वापस तुरन लगे, तां नेत नाल बारिश आ गई। रात पैण तों पहला ही बदलां ने रात कर दित्ती। इन्हां ने मन विच ख्याल कीता जे हुण टुर पए जंगल दा मसला है, शायद रस्ता भुल जाइए, हनेरी चखड़ विच चलना चंगा नहीं हुंदा, बैठ के रात गुजार लईए। ता मन विच सोचिया जे थले बैठे मत कोई जानवर आ जाए। इस करके वृक्ष ते चढ़ बैठ दे हां, एक मुड़ सी दो टैन सन, एक ते भगवान कृष्ण ते दूसरे ते सुदामा। साध संगत बोलो श्री वाह। क्योंकि नाता है भगती दा,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਅਰਜਨ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਾ ਭਗਤ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਣ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੇਰੀ। ਹੇ ਅਰਜਨ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤਨ ਕਾ ਭਗਤ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਣ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੇਰੀ, ਭਗਤਨ ਕਾਜ ਲਾਜ ਹੋ ਛੋਡੋ, ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਤਾਵੋ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜ ਪੜੇ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜਾਏ ਛੁਡਾਂ। ਅਖੇ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੋ ਭਗਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਹੈ ਮੇਰੋ, ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤੀ ਕਾ ਨਾਤਾ, ਮੈਂ ਰਤ ਹਾਂਕਦਾ ਤੇਰੋ। ਆਖਿਆ ਅਰਜੁਨ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ? ਤੂੰ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਥਵਾਨ, ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਦਕੇ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ए आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जान। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतर जामी है। हर अंतर जामी सब विद जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा है। ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रहे। आखिया इतवार नहीं आया। कहन लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है तेरी जबान ते इतवार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्री। सुदामा दलिद्री हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आखिया ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जाओ। ता बहाना लगाया भी एडे वड्डे पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई उगुण धान पई छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है तो साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चोर जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जाके मिलो।

आए इते ना किते दिन खोए इना दिन किथे रहे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा फर के ले आई। जिसले चरण धोन लगे आओ सखा तू पाए महा दुख आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए। नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी रात का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दिते। फिर आखन लगे सुदामे सुनिया भी तेरा विआह हो गया हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हैं तुहाडी कृपा है। कहन लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं। ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे। अगे हो के भगवान कृष्ण ने वो चावलों की पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन। वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे। सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे। आखन लगे नहीं भई ये भक्त दा प्रसाद भगत दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा ये मेरे भक्त दा प्रसाद। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां दुख सुख फोले। एक दिन सुदामे ने बेनती कीती भगवान हुण आ गया बख्श बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावा वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहण लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं भरे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन। ओ दिन जड़े कठियां गुजारे सन ओ दिन नहीं भूलते सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाओ।